0: हाँ मिस्टर गोम्स, आपके यहाँ कोई जुआ खेलने की जगह है, कैसीनो वगैरह?
1: कैसीनो? नो सर।
2: तुम्हें जुआ भी खेलना है?
0: माला शाह, तुम जानती नहीं हो, आई एम अ गैम्बलर।